नहीं, सुकून नहीं मिलेगा। हर आदमी को ब्रेकिंग न्यूज़ देनी होती है, हर आदमी को फौरन खबर पहुंचानी होती है, ताकि वो सच भी हो या झूठ भी हो, इंसान अमीन बनने के लिए तैयार नहीं होता है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि वला तज तरे आला खयानतिन, अब अदा हिम्मत न करना कभी भी खयानत में। हिम्मत करना हो सच बोलने में अपनी हिम्मत दिखाओ, करेज दिखाओ, खयानत में कभी अपनी हिम्मत न दिखाना। और तीसरी चीज والثالثة الخوف من الله عز وجل كأنك ترى, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ तुम्हारे दिल में होना चाहिए। अल्लाह का डर, जिसे हम तकवा बार बार सिफारिश करते हैं, तकवा इलाही की, ये अल्लाह का डर इंसान के अंदर होना चाहिए। अल्लाह का डर कहाँ नज़र आना चाहिए? मुमकिन है लोगों के दरमियान इंसान डरे भी और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करे, वहाँ अल्लाह का डर होना चाहिए जहाँ कोई इंसान को देखने वाला ना हो, कहीं इंसान को देखने वाला और मुशाहिदा करने वाला ना हो, वहाँ पर इंसान को अल्लाह का डर होना चाहिए। का अन्न का तरा, दो मरहले हैं, एक मरहला ये कि हम अल्लाह के वजूद का एहसास करें, और ये कि अल्लाह भी हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है, नो डाउट। ये तो ये हमारा अकीदा है, ये हमारा फेथ है, तौहीद का पार्ट ऑफ द तौहीद है। अल्लाह बसीर है, वो हर हाल में हमें देखेगा, हर काम को हमारे देखेगा, हत्ता हमारे इंटेंशंस को देखेगा, नहीं हमारे इरादे जो हमारे दिल में गुजरते हैं उनको भी अल्लाह देख भी लेता है, पढ़ भी लेता है। अल्लाह बसीर है जी, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। लेकिन इससे बड़ा मरहला जो ईमान का है, जो फेथ का है, वो ये कि हम भी अल्लाह के वजूद का एहसास करें, हम कहें हम भी हमारी ज़िंदगी में हो कि अल्लाह हमें देख रहा है। ये यकीन की आखिरी मंजिल है। कअन्ना का तरा, गोया तू अल्लाह को देख रहा है, कामों से पहले, काम करते हुए, कामों के बाद इंसान अल्लाह तबारक व तआला के वजूद का एहसास करे। एक सेंस इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम अल्लाह का, अल्लाह के वजूद का अपनी ज़िंदगी में एहसास करें। चौथी चीज पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, वर्राबिया तो कसरतुल बुका मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाना, बहुत रोना जी। कितना हमें हंसना आता है, कितना हम रोते हैं, रोना किस बात पर? अजमत परवरदिगार का एहसास करके इंसान के आंखों में आंसू आ जाए। कभी कभार जब हम मुलाकात के लिए जाते हैं ज़ियारतों पर, उलमाए कराम से जाया कीजिएगा, ज़ियारत पर जाते हैं तो एक उलमा का दीदार भी हो, उलमा से मुलाकात हो। जब बड़े उलमा परहेजगार उलमा से मुलाकात होती है, उनके सामने बंदा बैठता है तो बे इख्तियार आँख से आंसू निकल पड़ते हैं। ये आंसू इसलिए नहीं कि वो डरा रहे हैं, आंसू इस वजह से कि एक हैबत होती है उनके चेहरे पर, एक तकवा का नूर होता है उनके चेहरे पर। जब बंदा देखता है तो उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। अजमत का खौफ होना चाहिए। अगर हमें कहा जाए कि तुम अल्लाह के सामने खड़े हुए हो, जब हमसे कहा जाए कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो गोया तुम अल्लाह के सामने खड़े हुए हो, जाहिर सी बात है अजमत उलमा कहाँ और अल्लाह तबारक व तआला की अजमत कहाँ है। अगर थोड़ी देर के लिए बंदा फील करे तो उसके आंख से आंसू निकल पड़ेंगे। हम कहाँ और उसने हमें बुलाया है, मैं गुनाहगार, उसने मुझे इनवाइट किया है, उसने मुझे कहा है कि आ मेरे बंदे, मेरे मुसल्ले पर आ, मुसल्ले पर खड़ा हो जा, मुझे पुकार, मैं तेरी आवाज़ को सुनता हूँ। सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। क्या ये हजमत परवरदिगार, क्या ये अल्लाह तबारक व तआला की माइटीनेस इंसान को रोने पर मजबूर नहीं करेगी? अजमत का गिरिया, शौक का गिरिया, हाँ कभी कभार डर भी होता है, इतने गुनाह हो गए फिर भी वो मुझे बुला रहा है। हिसाब किताब का डर, अकाउंटेबिलिटी का डर, कयामत में खड़े होने का डर, पूछे जाने का डर, अगर ये डर इंसान की ज़िंदगी में आ जाए तो आंसू कभी इंसान की आँखों से रुकेंगे नहीं। चौथे इमाम जब खाना काबा के करीब पहुंचे, अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए घबरा रहे थे। हमारे पास रिवायतें हैं, हदीस हैं, हमारे लिए सबक है, नसीहत है।
मौला के आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। मौला कायनात

तैयारी ज़रूरी है। हमारे कुछ कम्युनिटी मेंबर्स के लिए जो रोज़ाना मेहनत करते हैं, कमाते हैं, उनके लिए तो कुछ मदद की ज़रूरत, ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। और इस मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए भी अगर हम कर सकते हैं के कर सकते हैं, उनका ख्याल करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ काम गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट करेगी, कुछ काम हमारे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट और वेलफेयर सपोर्ट, उनके ग़ज़ा का इंतज़ाम, उनके रहने का इंतज़ाम, उनके लिबास का इंतज़ाम, उनके दवाइयों का इंतज़ाम, खास तौर

जैसे EI नैनो रेन्स का जो खबर दी जा रही है, बहुत ज़रूरी एक काम हमारे लिए करना है, मेंटली प्रिपेयर हों, फाइनेंशियली प्रिपेयर हों और दूसरों की मदद करने का ख्याल हमारे दिलो दिमाग में रहे ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद करेगा। सोच हो तो अल्लाह तबारक व तआला उस सोच को कम्प्लीट कर देता है। घबराइएगा नहीं, मैं डराना नहीं चाहता आपको, लेकिन है ये प्रिडिक्शन तो प्रिडिक्शन है, हो सकता है। दुआ करें हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सहीफ़ सज्जादिया की दुआ नंबर 19, कभी बारिश नहीं होती है तो हम बारिश की दुआ करते हैं, नहीं बारिश नहीं होती है, रेन्स ना हो तो हम दुआ करते हैं, परवरदिगार हमें बारिश चाहिए। चौथे इमाम ने दोनों चीज़ों को जमा कर लिया एक दुआ में, परवरदिगार हमें बारिश चाहिए। ये अल्लाह की रहमत के हम इन नीड हैं, रहमत परवरदिगार के बगैर ज़िंदगी सर्वाइव नहीं हो सकती, हमें बारिश चाहिए। कैसी बारिश चाहिए, इमाम ने दुआ में कहा है, ऐसी बारिश के जिसके नतीजे में हमारे घर बर्बाद ना हो, ऐसी बारिश के जिसके नतीजे में हमारे क्रॉप्स बर्बाद ना हो, ऐसी बारिश के जिसके नतीजे में लोगों को परेशानियां ना हो, ऐसी बारिश जिसके नतीजे में फूल खिलें और लोगों के चेहरों पर ताजगी आ जाए, ऐसी बारिश जिससे इंसान को अनाज मिले, ऐसी बारिश जिसके ज़रिए से खुशहाली और लोगों के दरमियान और हैप्पीनेस को फैलता हुआ लोग देखें। एक दुआ को तो तकरार करें, दोहराएँ अपने घरों में, ये चौथे इमाम की दुआ, दुआ नंबर 19 हम सहीफ़े सज्जादिया। यकीन रखिएगा हमारी दुआएं बड़ी कारगर होती हैं, खुसूसी तौर पर नमाज जुमा में हम दुआ करते हैं, परवरदिगार जो तू हमसे इम्तिहान लेना चाहता है वो इम्तिहान हमारी ताकत के मुताबिक हो, परवरदिगार उस इम्तिहान में हमें कामयाबी अता फरमा, हमारे दिलों को आमादा कर कि हम खुद की और दूसरों की अपनी ज़िंदगी में मदद कर सकें इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبيان محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة النساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا سيدا شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من المستشهدين بين يدي اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एक सादा एक आम इंसान के लिए क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस?
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे, क्या, किस तरह का काम करता है?
2: मकसद ये नहीं है कि मसलन फिजिकल दुनिया में कोई काम किया जाए।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग आज जनरली यूज कर रहे हैं।
1: जैसे इंसान ने गेस किया वो मशीन भी गेस कर पाएगा
2: कि ये सर्च इंजिन नहीं है।
0: टेक्नोलॉजी को यूज करें, जो आज की दुनिया की टेक्नोलॉजी उसे यूज करें।
1: इस्तेफादा करना तो एक है चीज, उसको तो करना पड़ेगा।
2: इस टेक्नोलॉजी में अभी जंग है वो ट्रेंड मॉडल्स पर है।
0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारी ज़िंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या असर है? उलमा इसकी अहमियत इस वक्त क्या बता रहे हैं, क्या खतरात हैं, और फाइनली हम क्या चीज़ें करें ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतरीन तरीके से इस नस्ल और आइंदा नस्ल वाले इस्तेमाल कर सकें। इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ दो बरादर मौजूद हैं जो दोनों हौज़े इल्मी अकुम में हैं, तालिब इल्म हैं। सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूँ मौलाना कुमैल भोजानी साहब को, और अलैकुम सलाम, और काज़िम भोजानी साहब को अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने के बाद थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि दोनों भाइयों को मैं इंट्रोड्यूस भी कर दूं। हमारे बुज़ुर्ग हैं, सीनियर हैं, और एक उनका आईटी बैकग्राउंड भी है ताकि हमारा जो कॉन्वर्जेशन है वो आपके लिए रेलेवेंट हो, और ख़ुद इनकी टेक्नोलॉजी पर पकड़ भी मजबूत है उस हवाले से। मौलाना कुमैल भोजानी साहब जो हैं उन्होंने बीई किया है कंप्यूटर साइंस से, पूना से। मैं भी मौलाना साहब कहाँ से आपने पढ़ाई की? और
1: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूना में एक कॉलेज है जिसका नाम पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया था। और उसके बाद तकरीबन 8 साल मैं इंडस्ट्री में था, और जब मैंने हौज़ा ज्वाइन करने का फ़ैसला लिया उस ज़माने में मैं उस कंपनी में जो है टेक्निकल आर्किटेक्ट के उनवान से था, और हमारा काम ज़्यादातर जो है वो एम्बेडेड सिस्टम्स और नेटवर्किंग और इस तरह की चीज़ों में था।
0: सही, शुक्रिया बहुत बहुत। काज़िम साहब जो हैं ये भी एक इंटरेस्टिंग जर्नी है। मुझे ख़ुद याद है कि मैं आपके साथ पूना से बॉम्बे सफ़र कर रहा था, कार में थे हम लोग, जब आप जो हैं ईरान आने का आपका इरादा था। मुझे याद है कि हम लोग एक ही कार में थे और आप उस वक्त जो हैं पूना से बॉम्बे आ रहे थे, शायद वही आपका सफ़र था ईरान आने के लिए, तो यादें भी हमारी जुड़ी हुई हैं। काज़िम साहब, आपका जो है एक्सपीरियंस, सॉरी आपकी जो ग्रेजुएशन हुई वो आपने बीएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस किया था, चेन्नई से किया था। फिर उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपने कुछ काम किया था, और आपको यूएस की यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन भी आया था, लेकिन उसी वक्त हौज़े से भी इन्विटेशन आया था और आपने हौज़े की तरफ रुख किया था। थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बता दें ताकि हम लोग कॉन्वर्जेशन शुरू करें।
2: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस तरह आपने बयान किया कि मैंने जो बैचलर्स डिग्री है वो चेन्नई में एक इंस्टीट्यूट है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, CMI के नाम से उसे जाना जाता है, वहाँ पर मैंने तालीम हासिल की। और जो मौजू हमारा होता था वो मैथमेटिक्स और उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस, लेकिन कंप्यूटर साइंस में तकरीबन जो उसका थीरी पार्ट होता है यानी अल्गोरिदम्स है और इससे मुतालिक दूसरी चीज़ें हैं, मसलन इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन और इस तरह की, जो उस ज़माने में काफ़ी एक अहम टेक्नोलॉजीज थी और फिर वो ग्रो हुई है, और फिर डेटा साइंस वगैरह इस तरह की जो आजकल भी जो AI की टेक्नोलॉजी उससे भी रिलेटेड है, यानी इसका जो बैकग्राउंड है यानी AI के पहले जो मुख्तलिफ मौजूआत पे काम होता है,
0: फाउंडेशनल मौजूआत,
2: जी उसमें अल्गोरिदम्स और ये चीज़ें, और अलबत्ता फिर दूसरी चीज़ें भी होती है जिस तरह प्रोग्रामिंग है, डिज़ाइन है वगैरह। जी तो ये तकरीबन मेरा बैकग्राउंड रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद मुताल ने ये तौफीक दी कि उसी ज़माने में मेरी डिग्री ख़त्म होने के बाद ये रुझान ईजाद हुआ कि हौज़े इल्मिया में आया जाए ताकि जो भी खिदमत हम लोग के लायक है उसे अंजाम दे सकें।
0: माइक्रोसॉफ्ट के सिलसिले में आपके बारे में?
2: जी जी, तो वो ये था कि जब मेरी डिग्री ख़त्म हो गई तो बीच में एक वक्फ़ा होता है, या आप

0: यानी जो अगली यूनिवर्सिटी है या उसको एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 3 महीने के लिए बैंगलोर में माइक्रोसॉफ्ट का रिसर्च डिपार्टमेंट है, यानी वो अलग जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है वो एक अलग उसका वो होता है, ये है उसका नाम ही है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च। और वहाँ पे होता यही है कि जो कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने मसलन तालीम हासिल की है वो एम्प्लॉय करते हैं ताकि मसलन अल्गोरिदम से इस तरह के मौजूद पर रिसर्च हो सके। तो मैं रिसर्च असिस्टेंट के उनवान से वहाँ पर एक रिसर्चर थे, 3 महीना इंटर्नशिप के उनवान से मैं वहाँ पर था, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ को माना हुआ।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह को माने के बाद भी आपने भी बहुत सारे व्यूअर्स ने इस्तेफादा किया, हमेशा जो है हम लोग इस्तेफादा करते रहते हैं। हम कॉन्वर्जेसन को शुरू करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक लेमैन के लिए, एक सादा एक आम इंसान के लिए क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतनी अहमियत क्या आयतुल्लाह खामेनेई, जिसकी भी हम लोग ताकीद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो हम लोग उस पर भी आएंगे, आयतुल्लाह खामेनेई ने क्या कहा, लेकिन क्या है एक आम इंसान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिस्मिल्लाह
0: जी। टेक्नोलॉजी का इंसान के ज़िंदगी में हमेशा एक अहम असर रहा है, और टेक्नोलॉजी वो चीज़ है जो इंसानों ने मिलकर अपने अक्ल और तजुर्बे के ज़रिए जिसे ईजाद किया ताकि उसे एक अबज़ार के तौर पे, एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। यानी टेक्नोलॉजी एक चीज़ है जो हमें इजाज़त देती है कि हम बहुत सारे काम कर सकें। और इस हवाले से अलबत्त ये हम सब लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी एक न्यूट्रल चीज़ है, यानी वो अच्छे काम में भी इस्तेमाल हो सकती है, बुरे काम में। यानी खुद टेक्नोलॉजी में कोई ऐसी चीज़, एक टूल है, एक वास्ता है, एक ज़रिया है। जिस तरह आसान आप कहते हैं कि एक चाकू है, वो एक टूल है, आप अच्छे काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बुरे काम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो सिलसिला चला कंप्यूटर के मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ बनती गई, इसमें एक ये एक नया मरहला है कि जिसमें ज़्यादा ये है कि वो चीज़ें या वो काम जो एक इंसान अपनी अक्ल और इंटेलिजेंस के ज़रिए अंजाम देता है, कि मुख्तलिफ टास्क है जो हम इंसान अपने वही जो कुदरत जो खुदा ने दी है अक्ल और इंटेलेक्ट उसके ज़रिए हम अंजाम देते हैं। तो कोशिश ये की गई कि क्या मशीन के ज़रिए भी इसी तरह के काम जो इंसान अंजाम देता है उसे अंजाम हम दे सकते हैं नहीं, और उस पर काफ़ी रिसर्च और मेहनत और मुख्तलिफ फंडिंग पैसा लगा कर एक तकरीबन आप कह सकते हैं 2 साल पहले इस तरह एक उसके बारे में हम सबके लिए वो था कि एक नई चीज़ है, वो तो उस पर काम सालों से चल रहा था। और उसका मकसद ये है कि वो काम जो इंसान अपनी अक्ल के ज़रिए अंजाम देता है उसको मशीन के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए करवाया जाए। और ये कोई नई ताज्जुब वाली चीज़ नहीं है। मसलन एक ज़माना वो था मसलन 40-50 साल पहले कि उसमें ये होता था कि वो काम जो इंसान अपने जिस्मानी कुव्वत के ज़रिए अंजाम नहीं दे सकता, बड़े बड़े पत्थर उठाना, बड़े बड़े चीज़ों को एक जगह से, वो उसके लिए इंसान ने मशीन बनाया, मसलन ये बड़े बड़े जो क्रेन्स है या बुलडोज़र्स है ये। तो इसी तरह ये एक उस टेक्नोलॉजी है जहाँ पर अब मकसद ये नहीं है कि मसलन फिज़िकल दुनिया में कोई काम किया जाए, बल्कि जो इंसान अपनी इंटेलेक्चुअल दुनिया है उसके काम वो चाहता है कि मशीन तक मसलन मुंतकिल करे और वहाँ पर उसको अंजाम देने की कोशिश करे।
2: जी, यहाँ पे मैं अगर एक छोटी सी मिसाल दूँ कि मज़ीद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे क्या किस तरह का काम करता है। तो फ़र्ज करें आप फल ख़रीदने के लिए जाते हैं हर रोज़, मिसाल के तौर पे इंसान है, फल ख़रीदता है, उसने इतनी बार जो है वो एप्पल ख़रीदा है, ऑरेंज ख़रीदा है, ठीक है, तो अब उसको वो ऑरेंज का शेप और वज़न जो है उसको पता है, ठीक है। तो अब फ़र्ज़ करें उसके हाथ में एक फ्रूट दिया जाए, आँखें उसकी बंद कर दी जाए, अब वो शेप अगर उसको गेज कर ले अपने हाथ से और उसका वज़न गेज कर ले तो वो गेस कर सकता है कि कौन सा फ्रूट है
1: जी,
2: ठीक। तो अगर फ़र्ज़ करें हमने मशीन को कुछ इस तरह से एडवांस बना दिया, उसमें एल्गोरिदम्स और ये तमाम चीज़ें डाल के, और हमने उसको डेटा दिया कि भाई आपके पास ऐसे शेप का एक फल है, इतना उसका वज़न है, फ़र्ज़ करें कलर भी आपने उसको दे दिया, ये कलर है, फलां है, बहुत सारा डेटा उसमें डाल दिया। अब मशीन के अंदर ये अल्गोरिदम्स यूज़ करके ये सलाहियत आ जाती है कि अभी कोई नया उसको डायमेंशन दिया जाएगा कि मसलन एक चीज़ है जिसका शेप ये है, जिसका वज़न ये है, अब उससे आप कहेंगे कि गेस करो ये क्या है, तो जैसे इंसान ने गेस किया वो मशीन भी गेस कर पाएगा। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल, यानी इस टाइप का काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर पाता है।
0: और बहुत वसी तौर पर मसलन आज इस्तेमाल, मसलन जो मसलन आज कल फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है वो ऐनन जो कुमेल भाई ने मिसाल दी उसी तरह से है कि हम इंसान जब किसी से मुलाकात करते हैं तो उसके फेशियल कुछ फीचर्स और वो अपने जहन में उसको हम महफूज कर लेते हैं, वो डेटा हमारे जहन में। फिर अगले बार उनसे मुलाकात होती है तो हम उसे मैच करते इस तरह से. तो अब ये हुआ कि इसको कहा गया कि इसको कंप्यूटर्स में हम इसको लाया जाए, और लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि उसमें फिर हज़ारों तस्वीरें हैं जिसके ज़रिए इस सिस्टम को ट्रेन किया गया. हालांकि ये इस्तेमाल वो लोग इस्तेमाल करते हैं कि ये ट्रेंड मॉडल्स है, इसमें बहुत डेटा फीड होता है, और इस मॉडल का काम ये होता है कि जो डेटा उसे दिया गया, मसलन फर्ज करें 10,000 तस्वीरें, उससे वो एक पैटर्न्स और उसके अंदर जो कुछ खसूसियात है वो उसे एक आप कह सकते हैं कि उसको अलग कर लेता है. कि बाद में जब आप कोई नई तस्वीर उसे दे तो फिर वो जो डेटा से उसने जो इनसाइट्स निकाली है उसे मैच करके फौरन वो आपको बता सकता है कि ये मसलन फला इंसान की तस्वीर है. अलबत्त इसमें कुमेल भाई बेहतर इसको वजाहत कर सकते हैं कि ये 100% एक्यूरेट नहीं होते ये सिस्टम जी, बल्कि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी और चांस और इसका वो होता है, लेकिन बहुत ही पेचीदा कैलकुलेशंस और अल्गोरिदम्स के जरिए वो कहते हैं कि मसलन बहुत ज्यादा एहतमाल है कि ये सही होगा, लेकिन गारंटी इस बात की नहीं है. और हत्या ये आप जी, जो लोग यूज करते हैं चैट जीपीटी वो शुरू में डिस्क्लेमर लगा देते हैं कि यहाँ पे गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, और शायद आपने भी तजुर्बा किया होगा कि कभी कभी बहुत ही वाजे सवाल है लेकिन वो बहुत ही गलत आपको जवाब उनके दे सकता है, तो उसमें कोई गारंटी नहीं है
1: जी. जो लोग आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं जैसे गूगल मैप्स है या मसलन इस किस्म की कोई मिसाल दे सकते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग आज जनरली यूज कर रहे हैं.
2: पे एक तो बहुत सामने की मिसाल है जो हमारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं उनके जो होमवर्क्स है उसको करने के लिए, अब सब देखते हैं हमारे जो है. और तो ये बहुत वाजे सी मिसाल है कि बहुत सारा डेटा चूंकि ऑलरेडी इस मॉडल को दिया गया है, AI मॉडल जो इसके पीछे होते हैं उनको ट्रेन किया गया है इस तरह के डेटा से, और क्योंकि इसके अंदर से वो पैटर्न्स और ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी है और ये ट्रेंड डेटा है, तो यहाँ पे जब आप उससे सवाल करते हैं तो बहरहाल वो
1: चैट जीपीटी और चैट जेमिनी या ग्रोक इसकी बात कर रहे हैं
2: जी जी, इसमें ये चीज़ होती है कि वो जो डेटा ऑलरेडी उसको दिया गया है और जिसके ज़रिए से ये पूरा मॉडल ट्रेन हो चुका है, अब जब आप उससे सवाल करते हैं तो बहरहाल इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं और अल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं ताकि आपके सवाल को पहले समझा जाए, उसके उसके अंदर जो वर्ड्स है उसको उसके पैटर्न समझे जाए.
1: तो बेसिकली एक आम इंसान चैट जीपीटी या इस टाइप के एप्लीकेशन जो होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ जाके मिसाल के तौर पर वो सवाल करता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में मसलन नमाज के बारे में क्या कहा, ये एक सवाल मिसाल के तौर पर वो जाके चैट जीपीटी में करता है. चैट जीपीटी अब क्या करता है?
2: देखिए चैट जीपीटी अब इस सवाल को जब लेगा तो सबसे पहले तो ग्रामेटिकली इसको अलग करेगा कि इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर कौन सा वर्ब है, कौन सा जो है कौन सी चीज़ किस पे डिपेंडेंट है. बहरहाल उसके मराहिल है क्योंकि ये गुफ्तगू टेक्निकल नहीं है, मैं बहुत ही सादा करके इसको बयान कर रहा हूँ. तो ये जब हो जाएगा, अब जो मॉडल है जो ट्रेन हो चुका है और उसके अंदर जो पैटर्न्स है उसमें जाके मैच कर चुका है,
1: मॉडल ट्रेन हो चुका है, यानी चैट जीपीटी
2: ने पूरा नहजुल बलागा जो है उसको मसलन डिसाइफर करके उसके अंदर जो पैटर्न्स है मुख्तलिफ मौजूआत है उसको जुदा कर लिया है, सेव कर लिया है,
1: ऑर्गेनाइज करके इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया है अपने पास.
2: अब जब वो आपके सवाल में देखेगा कि सवाल का मौजू क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मिसाल के तौर पे नमाज है और अमीरुल मोमिनीन है, ये दो अहम सब्जेक्ट है कि जिसके बारे में उसको तलाश करना है, तो वो फौरन जाएगा वहां पे जहां पे ये मौजूआत है.
1: अगर उसको मैंने सवाल में लिखा है नहजुल बलागा भी लिखा है तो उसके लिए क्लियर है कि नहजुल बलागा की पूरी नहजुल बलागा में से मुझे सर्च करना है नमाज के बारे में
2: जी, ठीक है, नमाज के बारे में.
1: तो अभी आम इंसान को तो वक्त लगेगा कि हर बार जाके, लेकिन वो तमाम इंफॉर्मेशन को जो नहजुल बलागा की है या कुल्लन मौला अली अलैहि सलाम की अगर हदीस कही जाए तो वो सबको डेटा को वो ऑर्गेनाइज करता है और तमाम नमाज की जो पॉइंट्स है उनको एक साथ लाके समझता है. अच्छा, उसको जब उसके पास सर्च हो जाता है तो सर्च होने के बाद ऑर्गेनाइज भी करता है वो कि उसके बारे में ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, राइट
2: जी.
0: लेकिन यहाँ पे एक अहम जो नुक्ता है जो बयान किया जाता है वो ये कि ये सर्च इंजिन नहीं है
1: जी,
0: यानी एक बहुत अहम वो है
2: जी.
0: क्योंकि सर्च इंजिन में ये होता है कि डेटा एक जगह रखा हुआ है और ये सर्च इंजन आएगा उस डेटा को सही ढूंढेगा. मसलन गूगल का जो काम है, गूगल क्या करेगा, गूगल खुद से तो डेटा नहीं बनाएगा, हजारों साइट्स है. मसलन फर्ज करें नहजुल बलागा के मौजू पर 20-25-30 साइट्स है. अब जब गूगल पे नहजुल बलागा नमाज अमीरुल मोमिनीन लिखेंगे तो वो जाएगा बेहतरीन साइट जहां पर इस मौजू पर गुफ्तगू आपको ढूंढ कर देगा. लेकिन चैट जीपीटी कुछ और करता है, क्योंकि चैट जीपीटी

0: ट्रेंड है हजारों लाखों करोड़ों साइट्स पर, और वो तमाम का तमाम डेटा तो सेव नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा है उसके कुदरत। तो करता ये कि आप एक बहुत सादा ताबीर में उस डेटा का खुलासा, एक समरी, एक इंसाइट्स वो सेव करता है। तो ऐसे नहीं है कि चैट जीपीटी के पास पूरा नहजुल बलागा का मतन और टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके पास नहजुल बलागा से इंसाइट्स और उसके कुछ एक समराइज्ड वर्जन है। और जब आप सवाल भी नहजुल बलागा का पूछेंगे तो जवाब भी देगा, तो उसमें थोड़ा वो प्रोबेबिलिटी से जवाब बनाता है
1: जी।
0: इसीलिए गलती का मसलन सर्च इंजन में होता है कि आपने सर्च किया, अगर आपने जो सर्च किया अगर वो है तो है, अगर नहीं है तो कहेगा कि नॉट फाउंड। लेकिन चैट जीपीटी कभी आपको नहीं कहेगा नॉट फाउंड, वो कोई ना कोई जवाब बना के वो कैलकुलेशन करके आपको देगा। इसीलिए अगर ऐसा मौजू हो जिस पर वो ट्रेंड ना हो या डेटा कम हो, तो आप देखेगा कि वो बहुत बुरे जवाब देगा, बहुत ही मसलन ऐसे जवाब देगा कि जो बेमाना है।
1: अगर इसको हम खुलासा इस तरीके से करें, आप लोग करेक्ट कीजिएगा, कि एक शागिर्द को, शागिर्द किस्म का एक आपका असिस्टेंट है, जो असिस्टेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन ट्रेन की गई है, और ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये जो है या इसको ट्रेन इस तरीके से किया गया है कि जो भी इंटरनेट की इंफॉर्मेशन इसके पास अवेलेबल होगी उसको वो ऑर्गेनाइज करके आपको उसका आंसर देगा। तो इसके बजाय कि आप जाके खुद चीज़ों को मालूम करें, वो आपका एक असिस्टेंट है जो आपके असिस्टेंट का रोल मिसाल के तौर पर चैट जीपीटी प्ले कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई जानना चाहता है हिंदुस्तान में, फॉर एग्जांपल मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, कौन सा फल मसलन मेरे सेहत के लिए अच्छा है, कौन सा फल, ये वो तमाम आसान इन्फॉर्मेशन होती है, या मिसाल के तौर पर ये फल खाना बेहतर है नहीं बेहतर है, ये तमाम आसान इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो आप चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर से, या चैट जीपीटी या चैट जेमिनी या ग्रुक या जिससे भी आप ले रहे हैं, तो आप उसे इस तरीके से, एक एंड यूज़र इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये हम लोग अभी एक बहुत ही सादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक मिसाल दे रहे थे ताकि एक आम इंसान के लिए समझ में आ सके। अच्छा, यही मिसाल के तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल हो सकता है, कि मिसाल के तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी को ट्रेन किया जाए कि मिसाल के तौर पर फला टास्क आपको अंजाम देना है, तो मिसाल के तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी को कहा जाए, अभी हम माशाल्लाह एक जगह तबलीग कर रहे थे, वहाँ एक अपने जवान है, उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर कई पेटेंट्स को भी अप्लाई किया है, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने ड्रोन को ट्रेन किया है कि ड्रोन जो है वो इतना ऊपर उड़ेगी, फिर उसके बाद इतना इतना किलोमीटर दूर जाएगी, फिर इतना किलोमीटर दूर जाने के बाद मिसाल के तौर पर फार्मर्स को बजाय इसके कि वो खुद अपना वो स्प्रे करें, वो एक ड्रोन जाएगी और वो ड्रोन पूरे उतने एरिया के अंदर वो स्प्रे करके, और उसको ट्रेन इस तरीके से किया गया है कि एक इंसान की तरह आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, और आपका ये फाइनल, तो ये एक इंडस्ट्रियल एग्जांपल भी हो गया ताकि व्यूअर्स के लिए क्लियर हो जाए कि ये एक इस तरीके का शागिर्द है कि जिसको आप जो चीज़ में ट्रेन कर देंगे तो वो ह्यूमन बींग्स की हेल्प करेगा उसी चीज़ में अंजाम देने की।
0: और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जिस ज़माने में कंप्यूटर आया था, तो कंप्यूटर इस तरह नहीं था कि एक काम के लिए या एक टास्क के लिए हो, कंप्यूटर जब आया तो एक ऐसी चीज़ थी जो आप सैकड़ों फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं
1: जी।
0: तो आज भी यही है, जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं हर जगह पर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। तो कहा जा रहा है कि ये इसी तरह की टेक्नोलॉजी है कि ये इतनी एक माना में पावरफुल है, दूसरे माना में इतनी उमूमी और जनरल है कि आप सैकड़ों अलग अलग फील्ड्स में, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड कार्स है, इमेज रिकॉग्निशन है, इमेज क्रिएशन है, मिलिट्री है, एग्रीकल्चर है, यानी आप जितनी फील्ड के बारे में आप तसव्वुर कर सकते हैं वहाँ उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए ये इतनी अहम है
1: जी।
0: और इसका असर भी जो दुनिया पर होगा, दुनिया की टेक्नोलॉजी पर होगा, वो बहुत ही एक बड़ा असर है। और यही नुक्ता है कि हमारे उलमा बिलखसूस आयतुल्लाह खामेनेई इस पर खास इनकी नज़र है, ताकीद है कि मुसलमानों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। मुसलमान अगर इसमें पीछे रह जाए तो वही हश्र होगा जो दूसरे एलीट टेक्नोलॉजीज है, कि जो आप देखते हैं कि जो पावरफुल मगरबी ममालिक है, जो इम्पीरियलिस्ट है, उनके हाथ में आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या दूसरे, और जब उनके हाथ में है तो उनकी मोनोपोली है, और जब उनकी मोनोपोली है तो फिर उसके ज़रिए वो दूसरों पर प्रेशर डालेंगे। तो इस तरह ना हो जाए कि ये टेक्नोलॉजी जो इतनी जिससे बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो मुसलमानों को इसमें आगे होना ज़रूरी है।
1: जो रहबर मौज़म की, जैसे काजिम साहब ने भी कहा कि रहबर मौज़म की जो नज़र है वो ये है कि

0: ये टेक्नोलॉजी है, एंड यूज़र इसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसा मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, और हम व्यूअर से कहेंगे कि आप मालूम करें, जानें, टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, जो आज की दुनिया की टेक्नोलॉजी उसे यूज़ करें। लेकिन वहीं पर वो कह रहे हैं कि कई लेयर्ड हैं ये चीज़ें, और जैसे काजिम साहब ने भी कहा कि फाइनली कुछ लोग होते हैं, जैसे आज दुनिया में मतलब हक और बातिल की जंग है, जहाँ मजलूमियत है, आप उसकी बात करेंगे तो आपको सेंसर कर दिया जाता है, कंट्रोल करा जाता है इन्फॉर्मेशन को। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कुछ सालों के बाद होने वाली है, वहाँ मुसलमानों को वो लेयर्ड पोजीशन के अंदर क्या रोल प्ले करना चाहिए, और खुसूसन आज के जवान जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो समझ रहे हैं या इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, उनको क्या उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और मकाम मुअज्जम रहबरी की जो ताकीदात भी है कि इस्तेफादा करना तो एक है चीज़, उसको तो करना पड़ेगा। अकलमंदी की निशानी ये है कि पूरी दुनिया हर फील्ड में जब इसको अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो कुल्ली तौर पे जो है हर अकलमंद इंसान इसके पीछे जाएगा और इसको सीखेगा। लेकिन उनकी ताकीद जो है वो इस बात पर भी है कि जो वो जो डीपर लेयर्स हैं उसके ऊपर हमारा तसल्लुत हो। उससे मुराद ज़ाहिरन उनकी ये है, जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग मॉडल्स को ट्रेन करने की बात हुई, तो देखें जब आप ट्रेन कर रहे होते तो आप उसको एक आमादा अच्छा या बुरा हर दो डेटा उसको प्रोवाइड कर सकते हैं,
2: बायस डेटा, मतलब
1: बायस डेटा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने बायस डेटा उसको प्रोवाइड किया मॉडल को ट्रेन होने के लिए, तो मॉडल जो है वो बायस जवाब देगा। और हमको मिसालें भी मिलती है, मिसाल के तौर पे एक साल पहले आप न्यूज़ में वगैरह सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, यूके में कुछ स्कूल्स ने ये ग्रेडिंग असेसमेंट के लिए एआई का इस्तेमाल करना शुरू किया। बाकायदा उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो लो क्लास के लोग हैं, इकोनॉमिकली वीक क्लास के जो लोग हैं, उनके बनिस्बत जो है सिस्टम ने बायस दिखाना शुरू किया, बाकायदा प्रोटेस्ट हुए, फिर उसको रोका गया। तो देखें वो जो लेयर्स हैं, डीपर लेयर, जहाँ पे वो डेटा सेट्स होते हैं, यानी वो जो डेटा जिसके जरिए से आपको मॉडल को ट्रेन करना है,
0: मशीन मशीन वही बोलेगा जो उसे बताया गया है।
1: जी बिल्कुल,
0: और जो
1: बिल्कुल
0: बताया जा रहा है उसी को कंट्रोल कर ले, और उसी को गलत चीज बताएं। जब आप उसको गलत चीज बताएंगे तो नेचुरली वो भी गलत ही बताएगा।
1: अगर आपने पूरा डेटा इस्लामोफोबिक उसको दे दिया और उससे ट्रेन किया, तो आखिरकार जवाब भी जो है वो इस्लामोफोबिक निकलेगा।
2: दिलचस्प बात ये कि असल जो आप एक एतबार से इस टेक्नोलॉजी में अभी जंग है वो ट्रेंड मॉडल्स पर है। मसलन आप देखें चैट जीपीटी का जो ट्रेंड मॉडल है वो प्रोप्राइटरी है, यानी वो किसी को कभी नहीं बताएंगे कि हमारा ये ट्रेंड मॉडल हमने क्या किया इसके साथ, यानी वो हिडन है, ओपन सोर्स मॉडल नहीं है, तो किसी को नहीं पता कि इन्होंने क्या किया।
0: चैट जीपीटी ओपन सोर्स के लिए
2: जी शुरू में जब हुआ उसके जो अर्ली मॉडल्स थे उसमें ये था कि वो मॉडल को ट्रेन करते थे फिर उसको ओपन सोर्स कर देते। अभी भी ओपन सोर्स बहुत सारे मॉडल्स मौजूद है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है उसमें चैट जीपीटी सबसे आगे, लेकिन उन्होंने क्या बनाया है, वो ट्रेंड मॉडल क्या है, उसके वैल्यूज क्या है, वो कभी रिलीज नहीं करेंगे। तो वो एक वो हिडन उसका अंदर का लेयर है,
0: पूरा मैकेनिज्म हिडन है। प्लस आप बता रहे थे कि डेटा
2: भी हमें नहीं पता
1: है, जरिए से
2: ये भी नहीं पता है कि क्या डेटा उन्होंने यूज किया
1: जा रहा है, वो उसका लोअर लेयर है, और वो हमको नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से उसको डेटा दिया है, कौन सा डेटा दिया है। खुली तौर पे वो कहते हैं कि हमने विकिपीडिया का फलां फलां 2030 तक का जो है डेटा इसको दिया, ये सारी चीजें, लेकिन ये कहते हैं किसी ने देखा
0: फ्री वर्जन में तो 2020 तक ही अभी तक है।
2: और इस काम की सख्ती इसी में कि जो अक्सर खर्चा होता है इस एआई के उसमें ये मॉडल ट्रेनिंग में होता है, वेला जब मॉडल ट्रेन हो जाए तो उसको एक्सेस करने यूज करना और उसको यानी अवेलेबल करना ये इतना मसला नहीं है। लेकिन मसलन कहा जाता है कि चैट जीपीटी ने जो अपना पहला मॉडल ट्रेन किया था सिर्फ उस मॉडल को ट्रेन करने $10 मिलियन खर्चा किया था, यानी उसकी कॉस्ट सिर्फ एक मॉडल ट्रेन करने की इतनी ज्यादा,
1: वो कंटिन्यूसली ट्रेन हो रहा है, उसके लिए मिलियंस ट्रिलियंस जो टेराबाइट डेटा है उसके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चूंकि इनके पास ताकत है, पैसा है, सब कुछ है, ये कर सकते हैं।
2: तो इसीलिए खतरा है कि ये ममालिक जिनके पास पैसा है ये इसमें आगे चले जाए और फिर ये अपनी मोनोपोली बना ले, फिर आके अपना राज जो दूसरे ममालिक है तमाम दुनिया पर वो करे।
0: पैसा तो अरब दुनिया के पास भी बहुत है,
2: लेकिन वो होंगे कहाँ पैसा लगाना,
0: तो उनको उनको ऑडी खरीदने में ज्यादा शौक है, बजाय इसके
1: कि अपने मॉडल्स ट्रेन
0: अपने
1: करें,
0: मॉडल्स
1: अपने डेटा
0: ट्रेन
1: से।
0: करें बल्कि दूसरों से लेने का वो है। तो यहाँ पर एक आप आपकी बात कंप्लीट कर लें, जो आप कह रहे थे कि डेटा जो है गलत दिया जाए तो वो बायस डेटा होगा तो बायस रिजल्ट देगा।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: तो इसकी तरफ हम तवज्जो रखें कि ये जो डीपर लेयर है ये हमारे हाथ में उस तरह से नहीं है। तो हमारे जवान जब इस्तेमाल कर रहे हैं चैट जीपीटी या दूसरे जो चैट बॉट्स जो एआई के हवाले से, तो ये जहन में रहें कि वो हर बार जो सवाल पूछेंगे उसका एक्यूरेट जवाब मिलेगा, इस पे मुतमईन ना रहे। क्योंकि मखसूसन वो चीज़ें जो दीनी
0: दीनी
1: चीज़ें हैं
0: बिल्कुल,
1: उसमें, क्योंकि हमको नहीं पता क्या क्या इसको फीड किया गया है।
2: और मसलन ऐसे मौजूद जो थोड़े सेंसिटिव हसास हैं, मसलन सियासी मौजू पे आप मसलन सवाल करें, आपको हमेशा वही जवाब मिलेगा जो एक वेस्टर्न नैरेटिव है
0: जी।
2: कभी आपको अल्टरनेटिव जवाब या ऐसा जवाब नहीं मिलेगा। मैंने खुद इसको ट्राई किया, मसलन मैंने चैट जीपीटी से गुफ्तगु शुरू की मसलन इंकलाब इस्लामी ईरान के बारे में, तो बहुत ही वाजे तौर पे मनफी जवाब उसने देना शुरू किया। तो मैंने पलट कर मसलन गुफ्तगु के उसमें कहा कि क्या इस बात का एहतमाल नहीं है कि तुम्हारा डेटा बायस्ड हो और तुमने फारसी सोर्सेस से मसलन डेटा नहीं हासिल किया है। तो मैंने जब इस तरह वो किया तो वो एक कदम पीछे हटा, यानी वो जो कंप्यूटर सिस्टम है उसने कहा कि हाँ इस बात का एहतमाल है और हमें मसलन बहुत ही ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वो बायस ना हो। लेकिन देखिए कोई ये काम नहीं करेगा कि वो चैट जीपीटी से गुफ्तगू करेगा और उससे पूछेगा कि नहीं तुमने इसको नहीं देखा है उसको नहीं, वो कहेगा कि भाई मुझे बताओ कि वियतनाम वॉर में क्या हुआ। और ये भी आप देखें, आपको वही अमेरिकन नैरेटिव जो वेस्टर्न नैरेटिव वही मिलेगा, जो जुल्म हुआ वियतनाम में या जो वो हुआ उसके ऊपर आपको कम गुफ्तगू मिलेगी। देखिए ये वाज़े बायस है इन सिस्टम।
0: अभी हम लोग खतरात की तरफ नहीं जा रहे हैं, रहबरे मौज़म खतरात पे आएंगे कि इसमें खतरात बहुत हैं। ये खतरात यही है कि वो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल है तो डिसीजन कंट्रोल है, क्योंकि इंसान इन्फॉर्मेशन के बेस पे जिंदगी में डिसीजन लेता है। तो वो इन्फॉर्मेशन पूरा कंट्रोल कर लिए तो आप जो डिसीजन लेंगे आपको लगेगा मैं डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन उनके इंफॉर्मेशन के मुताबिक डिसीजन लेंगे तो आप कंट्रोल्ड हैं उनके इंफॉर्मेशन पर, तो ये खतरा है। तो रहबरे मौज़म कह रहे हैं कि आइंदा ये लोग जो हैं जिसे IAEA कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया में कि कौन न्यूक्लियर एनर्जी यूज बना सकता है कौन नहीं बना सकता है, पहले हमने बना ली, पहले हमने बम भी बना लिया, सब हमने बना लिया, अब हम दुनिया को बताएंगे भाई आप बना सकते हो आप नहीं बना सकते हो, आप कर सकते हो आप नहीं कर सकते हो। अगर AI में मुसलमान आगे नहीं बढ़े और इस टेक्नोलॉजी को अपने हाथों में नहीं लिया तो रिजल्ट ये होगा कि AI इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है उसकी तरह जो है ये भी हो जाएगा। इससे क्या मुराद है, क्या कंट्रोल वाला जो पॉइंट है कि व्हाट इज इट, कि हमें जो करना है ताकि कंट्रोल आइंदा में जो, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दूं कि मुझे याद है 1997 में मैं रिसर्च कर रहा था, रहबरे मौज़म ने 97 में एक स्पीच दी थी 27 ईयर्स आज से पहले, जिसके अंदर उन्होंने तुल्लाब लोगों से मुखातिब थे और कह रहे थे कि इंटरनेट का रेवोल्यूशन आ रहा है और इसमें उलमा की जिम्मेदारी है कि इंटरनेट के रेवोल्यूशन का सही इस्तेमाल करें वगरना रोज़े क़यामत खुदा को हमें जवाब देना पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: और उन्होंने अपनी नज़रिए के हिसाब से ईरान में उलमा को IT की तरफ और इस तरफ जो है अलग अलग सिस्टम्स बनाने की कोशिश की, लेकिन इन रियलिटी 27 ईयर्स के बाद हम लोग जो हैं इंटरनेट में वहां नहीं है जहां हमें होना चाहिए था। 2002 में रहबरे मौज़म ने जंगे नर्म पहली बार बोला था, जंगे नर्म इतने सालों से रहबर बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, हम सुन रहे हैं सॉफ्टवेयर लेकिन हमें करना नहीं आ रहा है सॉफ्टवेयर, यानी कंट्रोल जो है फाइनली उनके हाथ में, कहीं ऐसा ना हो कि AI के साथ भी यही हो जाए। तो क्या है, व्हाट इज इट कि हम लोगों को वहां पहुंचना है?
2: जी बिल्कुल, यानी ये इसके मुकदमात वहाँ फराहम हो चुके हैं कि वो इस तरफ यकीनन कदम आगे बढ़ाएंगे कि जितनी ये टेक्नोलॉजी और एलीट होती जाएगी और इसका एप्लीकेशन आएगा बहुत ही हसास सेंसिटिव फील्ड्स में, मिसाल के तौर पर मिलिट्री में, तो यकीनन वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी किसी और को मिले ताकि उनका जो मिलिट्री डोमिनेशन है वो हमेशा बाकी रहे। क्योंकि मिलिट्री डोमिनेशन के जरिए अभी जो हालात है उसमें हम वाजे है कि मिलिट्री डोमिनेशन और जुल्म के जरिए वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक कंट्रोल पॉलिटिकल कंट्रोल दूसरे टाइप्स ऑफ कंट्रोल को दूसरों पर ज़बरदस्ती थोपे। तो मिसाल के तौर पे AI ये डेवलप होगी, इसका एप्लीकेशन हर जगह पर है, मिन जुमला मिलिट्री में, मिन जुमला मसलन दूसरे मसलन सर्वेलेंस में है, तो आप चाहते हैं कि डेटा वो करे देखे कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं दुश्मन क्या कर रहा है इस तरह, तो ये यकीनन होगा कि वो चाहेंगे कि इसको मोनोपोलाइज करे जिस तरह उन्होंने बहुत सारे दूसरे टेक्नोलॉजीज को मोनोपोलाइज किया है और वो कभी शेयर नहीं करेंगे इन चीज़ों को। क्योंकि देखिए मगरबी जो तमद्दन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसका जो असल असास है वो ये है कि वो दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं, दूसरों को सप्रेस करना चाहते हैं, उनकी तहकीर करना चाहते हैं, उनके रिसोर्सेस लेना चाहते हैं और हर चीज़ उन्हें अपने लिए चाहिए। तो यहाँ पर भी यही होगा, उसका तन्हा रास्ता वही है।

0: कंप्लीट करके आ जाओ
1: जी।
0: तो देखिए यानी कितना ये खतरनाक और कितना यानी बेरहमाना एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल असल ये रुख इख्तियार कर
1: हो
0: सकता
1: रहा है और कितना शदीद आगे जाके हो सकता है
0: यकीनन।
1: यानी ये हमारे लिए तो इसके खतरात के अंदर एक एस्पेक्ट जो है इसका इंसानियत की तबाही और यानी मर जाए 10,000 मर जाए 2,000 मर जाए 3,000 मर जाए यानी कोई इंसानियत उसके अंदर एथिक्स और मोरालिटी नहीं है। तो इनके मुकाबले के लिए मौला अली अलैहिस्सलाम की जो हदीस है इल्म सुल्तान उन इल्म इंसान को कुदरत देता है तो बगैर इल्म के इंसान जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता।
0: यानी अबजार है इल्म लेकिन ऐसा अबजार है जो जरूरी है यानी अगर आपके पास ये अबजार ना हो तो ना आप जुल्म का मुकाबला कर सकते हैं ना अपने हुकूक और अपने राइट्स को आप वापस ले सकते हैं क्योंकि सामने वाला जो एक बहुत ही अजीब ताबीर थी रहबर इनकलाब की जो मगरबी तमद्दन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उन्होंने कहा था कि एक ऐसी चीज़ है जो मॉडर्न वर्ल्ड है कि ना इनके पास दीन है ना इनके पास अखलाक है। फिर एक जुमला और भी कहा कि ना इनके पास जो इंसानी शरफ और जो बेसिक इंसानियत होती वो भी नहीं क्योंकि देखिए इंसान की जिंदगी में तीन मरहले होते हैं। सबसे आला मरहला ये कि इंसान दीनदार हो तो ख्याल करता है दूसरों के हुकूक का। उसके नीचे का मसला ये है कि इंसान अखलाक की रियायत करता है अखलाक के पाबंद। उसके नीचे का मसला ये कि बहरहाल हर इंसान के उसमें वो बेसिक इंसानियत होती है वो तो इंसान बाकी रखे का कि एक ऐसा तमद्दुन
1: जुल्म बुरा है ये हर इंसान मानता है लेकिन आज ये दुनिया आ गई कि जुल्म करने के बाद टिकटॉक के रील्स डालते हैं कि हमने जुल्म किया और देखो वाह वाह हमने कितना अच्छा जुल्म किया है। यानी वो दुनिया इनकी जो सिविलाइजेशन एक्चुअली देयर इज नो सिविलाइजेशन देयर अनसिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड होना ही उनकी सिविलाइजेशन
0: और ये टेक्नोलॉजी के बलबूते पर इसका एक अहम रुख यही टेक्नोलॉजी है। तो ये कि ये एक अब्जार है टूल है तो मुसलमान भी इसमें आगे बढ़े ताकि जुल्म का मुकाबला भी कर सके और दुनिया के लिए वाजे कर सके कि टेक्नोलॉजी को एथिक्स और अखलाक को दीन के साथ कैसे इस्तेमाल किया
1: जी। एक और यहाँ पर बात आई थी मैं ऐड कर दूँ सर्वेलेंस के सिलसिले में एक डिस्कशन हुआ था कि कितना ख़तरनाक है एक आम इंसान के लिए। खुद सैयद हसन ने भी कहा था कि जो मोबाइल आपके हाथ में एक्चुअली ये जासूस है
0: बिल्कुल
1: और ये इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है स्टोर कर रहा है पहुँचा रहा है आप क्या खा रहे हैं क्या पहन रहे हैं गूगल पे जो हैं सर्च जो हैं वो आपके प्रेफरेंस बेस्ड आते हैं। एक थोड़ा सर्वेलेंस की दुनिया में किस तरीके से आज इंसान के ऊपर किस कैसे कंट्रोल किया जा रहा है और इसके अंदर एआई का रोल कितना है और कितना शदीद हो सकता है थोड़ा ये भी हम डिस्कस कर लें जी।
2: सही जी इसके अंदर सर्वेलेंस क्योंकि ये सालों से इनको जो इस्तकबार जहानी है इनको ये समझ में आ गया है कि सर्वेलेंस का मतलब ये है कि आप कंट्रोल कर सकते जहाँ जहाँ सर्वेलेंस के ऊपर आपका कंट्रोल है इसका मतलब ये है कि पूरे माशरे पे आपका कंट्रोल है। और ये उनको चीज़ समझ में आ चुकी थी।
1: क्या करते हैं
2: सर्वेलेंस में ये होता है कि आप जैसे ही पब्लिक स्पेस में आते हैं शुरू में जो इब्तदा में जो सर्वेलेंस की बात गुफ्तगु थी और उसमें जब आप पब्लिक स्पेस में आते हैं बहरहाल तो आपको जो है नज़ारत में रखा जाएगा आपको देखा जाएगा आप कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं और जब आप को बार बार देखा जाएगा तो उससे कोई भी एक पैटर्न समझा जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप सुबह उठते हैं जॉब पे जाते हैं अपना और वापस घर पे आ जाते हैं तो इससे क्या समझ में आएगा ये जो इंसान है ये अपने काम से काम रखता है। फर्ज करें एक शख्स है वो मसलन जॉब पे जाता है फिर मस्जिद जाता है मिसाल के तौर पे फिर कई दोस्तों से मिलने जाता है कहीं और जाता है तो समझ में आएगा कि ये वो पहले वाले की तरह नहीं है। तो देखिए मुख्तलिफ पैटर्न से आप हत्ता पब्लिक स्पेस में जो सर्वेलेंस हो रहा है उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी होगी इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
1: तो मिलियंस ऑफ लोग हैं उनका डेटा है
0: बिल्कुल
1: वो कब उठते हैं कब जाते हैं कितने बजे की ट्रेन पकड़ते
0: क्या
1: हैं
0: क्या खाते हैं क्या प्रेफरेंसेस है हत्ता क्या कपड़े पहन सकते हैं ये
2: क्योंकि उसकी पूरी पर्सनैलिटी वो आपको सामने ला के दे सकता है।
0: और आप सोचे ये डेटा पहले तो ये कि डेटा उनके लिए बहुत अहम है स्टोर करते हैं उसे क्लासीफाई करते हैं अब आप इस डेटा को जो ये एआई एल्गोरिदम से इसके साथ मिक्स करें तो इतना डेटा उनके पास है फिर ये एआई एल्गोरिदम आएगा इससे आपको पैटर्न्स और इनसाइट्स निकाल के देगा और खुलासा करके देगा कि ये इसको ये पसंद है या तक कुछ जगहों पे प्रेडिक्ट करेगा नहीं कहेगा कि शायद ये आने वाले एक महीने में उसकी हिस्ट्री देख कर शायद ये मसलन कोई शादी है इसकी या कोई दूसरी चीज़ है उसमें जाने वाला है। और फिर इसी डेटा को इस्तेमाल करके दो काम करते हैं पहले तो ये कि आपको ऐसे सजेशंस देते हैं फेसबुक यूट्यूब वगैरह कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, यानी आपके जरिए पैसा कमाएंगे ये, पहले ये। दूसरा ये कि ये बेहतर

0: बेहतरीन तरीका है आपको कंट्रोल करने के लिए, आपके अफकार को, आपके सियासी इंक्लिनेशंस को, इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंच रही है। मसलन आज अभी ये बड़ा मसला है कि जो भी ये जंग हो रही है, ये जो मसलन जेनोसाइड है, इसमें अब हर एक जानता है, नहीं हर एक कर, लेकिन आप जाए अमेरिकन पब्लिक में जाए, ये इंफॉर्मेशन इस तरह नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि बीच में जो ये लोग हैं वो ये AI एल्गोरिदम्स और ये डेटा यूज कर रहे हैं, सेंसरशिप है, लेकिन बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सेंसरशिप है। यानी वो सामने वाले को ऐसे लगेगा कि नहीं, मैं तो सब जानता हूँ, जो पूरी दुनिया की खबर है, लेकिन हकीकत में ये है कि जो हकीकत है उससे छुपाई जा रही है। यानी बहुत ही एक पेचीदा निज़ाम है जिसमें सर्वेलेंस के जरिए, इसीलिए किताब भी एक काफ़ी मशहूर भी हुई, एक लेडी ऑथर है, रिसर्चर है अमेरिका में, उसने नाम ही उसका ये लिखा, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। और उसमें उसने यही बात की कि हम मार्केट कैपिटलिज्म, जिसमें मकसद ये होता था कि प्रोडक्ट्स बनाए और लोगों को बेचे, कंज्यूमरिज्म और पैसा कमाए, कहा कि उससे हटकर हम एक नए दौर में आ चुके हैं जिसका नाम है सर्वेल, उसने नाम ही ये रखा सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, जिसमें वो आपका डेटा लेंगे, आपको सर्वेल करेंगे, किसी अमनियती उसके लिए नहीं, बल्कि जानने के लिए आपकी ज़िंदगी क्या है, उससे ये पैसा कमाएंगे। फेसबुक है, दीगर कंपनीज है डेटा इंसाइट्स के जरिए। और इसमें फिर हो ये जाता है कि एथिक्स और अखलाक हो, लोगों का फ़ायदा, और ये इसकी कोई अहमियत नहीं, उनके लिए जो मकसद है वो प्रॉफिट है। मसलन वो सिगरेट कंपनी है, वो कहेगी कि लोगों की हेल्थ, वो हमें कुछ लेना देना नहीं है, मैं देखूँ कि मैं ज़्यादा सिगरेट्स कैसे बेचूँगा, डेटा मिलियंस लोगों का हासिल करूँगा, AI एल्गोरिदम्स के जरिए उससे पैटर्न्स वो प्रेडिक्ट करूँगा, प्रेफरेंसेस और मार्केटिंग मेरी स्ट्रेटेजी AI ड्रिवन होगी कि मेरा सेल्स बढ़े।
1: सही, पहले ऐसा होता था कि उन्हें एडवर्टाइजमेंट जो है वो सब इंसानों के लिए करनी होती थी कि सब मेरी एड्स देखें। अब ये है कि हमारे पास डेटा ऑलरेडी आ गया है कि इतने इंसान जो है वो सिगरेट पीते हैं, और जब इतने इंसान सिगरेट पीते हैं, मिसाल के तौर पर डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सिगरेट्स खरीद रहे हैं, तो उनके पास डेटा स्टोर्ड है कि कितने लोग सिगरेट्स खरीदते हैं, कितनी सिगरेट्स खरीदते हैं,
0: अतः ये भी कि किस लोकेशन पे खरीदते हैं। क्योंकि वो भी मुमकिन है ट्रैक कर रहे हो कि मसलन इतने परसेंट लोग इस लोकेशन पे ज्यादा खरीदते हैं, तो ये उनके लिए एक डेटा है कि आप वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को उस पे लगाए कि और सेल्स को बढ़ा।
2: 1-to-1 यानी आपने कहा कि मसलन इतने यहाँ पे ये ज्यादा बिकता है, ज्यादा चलता है, 1-to-1। मिसाल के तौर पर मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, मैं जो यूट्यूब पे देख रहा हूँ अभी, और इसके बाद मुझे जो सजेशन आएगा वो शायद वो ना हो कि आपको आएगा,
1: क्यों? यकीनी
2: जी, क्यों?
0: क्योंकि पब्लिकली नहीं कहते हम लोग,
2: पूरा डेटा मेरा उनके पास है, व्हाट्सएप का डेटा है, और मुख्तलिफ फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ उनके पास है, उनको मेरी शख्सियत पता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है।
0: और इसमें प्राइवेसी के हवाले से बड़े सवाल आते हैं, अलबत्त जाहरी तौर पर तो लोग कहते हैं कि हम
2: प्राइवेसी,
0: मसलन इसकी मिसाल है, अलबत्त बहुत छोटी सी मिसाल, मसलन हमारे एक दोस्त है, वो कभी कॉफी नहीं पीते, लेकिन वो किसी से एक जगह पर तकरीबन उन्हें 7-8 मिनट वो कॉफ़ी के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की, अगले दिन उनके गूगल और यूट्यूब में उन्हें कॉफ़ी के सजेशन
1: सर,
0: उन्होंने ताज्जुब किया कि मैं तो कॉफ़ी
2: नहीं देखा गया।
1: इंस्टाग्राम के सीईओ का एक वीडियो है जहां पर इंस्टाग्राम के सीईओ बैठे हुए हैं और वहां पर दो एंकर्स हैं, दो एंकर्स जो हैं वो एक लाइव अमेरिकन चैनल पर, वो उनसे कह रहे थे मैं टोक्यो जाना है, और टोक्यो की बातें करने लगे, और सडनली उसके बाद उसमें से एक एंकर फोन उठाती है और वो इंस्टाग्राम ऑन करती है, और फौरन उसको टोक्यो के होटल्स का ऐड आता है, तो वो उसको पूछती है आर यू लिसनिंग टू मी, इज इंस्टाग्राम लिसनिंग टू मी, इंस्टाग्राम सुन रहा है मेरी बातों को, तो कहता नहीं नहीं हम नहीं सुनते, तो कह रही कैसे आया मुझे टोक्यो का ऐड जबकि हमने मेरा फोन बंद करके सामने रखा हुआ है, यानी मैंने ऑन भी नहीं है इंस्टाग्राम ऐप ऑन भी नहीं है,
0: तो ये खतरात काफी इंसान थोड़ा अलर्ट रहे।
1: ये जो हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप अगर फोन यूज कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, और ये एहसास, ये एहतमाल कि आपको कोई नहीं देख रहा है, खुसूसन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या वो ऑर्गेनाइजेशंस जो जिनके पास बहुत इजीली आपका डेटा एक्सेसिबल है, तो क्या ये हाँ मसलन ये सोच सकते हैं कि नहीं हम डेटा हमारे फ़ोन में लेकिन कोई देख नहीं रहा, ये पॉसिबल है?
0: देखिए फ़र्ज इंसान जो बेहतरीन तरीका इसका ये है कि इंसान वही डेटा रखे जो पब्लिक है, यानी आपके फ़ोन पे वही डेटा रखे जो कभी आपको कोई आके आपका दोस्त पूछ ले के मोबाइल दिखाइए, तो आपको कोई मुश्किल झिझक ना हो कि हाँ इसमें जो मेरा हमेशा काम का डेटा है, मैं मसलन तबलीग के लिए जाता हूँ, लोगों से गुफ्तगू करता हूँ, तो इंसान ये बेहतरीन तरीका है कि इंसान के पास हर चीज़ हो, वाजे तौर पर क्लियर हो। हाँ, और ये थोड़ा मसलन हो सकता है ख़तरनाक कि इंसान मसलन प्राइवेट चीज़ें वगैरह वो मसलन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, तो इंसान एहतियात करे शायद ज़्यादा बेहतर।

क्योंकि सर्वेलेंस की बात थी और सर्वेलेंस में इस डेटा को किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हमने देखा कि किस तरह से लोगों को जो है जेनोसाइड किया जा रहा है या पैसे कमाने के लिए। लेकिन एक और भी ख़तरा है जिसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, चूँकि बात ये हो रही थी कि क्या क्या इससे किया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है। एक बार तो है कि आपको जान से मार दिया जाएगा मिसाल के तौर पर, ठीक है, आपकी ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन चूँकि हम मुसलमान हैं, बहरहाल हम अकीदा रखते हैं, अगर इस डेटा को इस्तेमाल

0: एक बार तो है कि आपको जान से मार दिया जाएगा मिसाल के तौर पे, ठीक है, आपकी ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन चूंकि हम मुसलमान हैं, बहरहाल हम अकीदा रखते हैं, अगर इस डेटा को इस्तेमाल करके आपके ईमान को अगर ख़त्म कर दिया गया, तो ये दुनिया में तो आप चंद साल जो है
1: जी
0: वो
1: नहीं,
0: जी लेंगे, लेकिन आपने अपनी पूरी आखिरत, जो हमारा अकीदा है कि पूरी जो है यानी इनफाइनाइट
1: आबादी
0: है,
1: है।
0: अबदी है, वो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमारे नौजवान जवानों को
1: आयतुल्लाह
0: है,
1: खामिनाई का जुमला इसके हवाले से, वो कहते हैं कि
0: जी
1: मसलन जिस्म खत्म हो जाएगा तो मुश्किल नहीं है,
0: मुश्किल नहीं है,
1: लेकिन
0: लेकिन
1: अगर रूह
0: रूह को
1: खत्म हो
0: बर्बाद
1: गई
0: कर
1: तो,
0: दिया।
1: यानी वो जंग नर्म को, ये इसी चीज़ के लिए कहते हैं सॉफ्ट
0: बिल्कुल
1: वॉर, जो है, जो जहनों को कंट्रोल करना दुश्मन
0: बिल्कुल
1: चाहता है, उसका खतरा यही है कि वो आपकी पूरी अबदी जिंदगी को तबाह कर
0: जी
1: देगा।
0: जी और हम देखते
1: और
0: हैं कि किस तरह से एआई को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता
1: जी
0: है, चाहे वो उनके खुद के इलेक्शंस के अंदर हो।
1: जी
0: यूएस इलेक्शंस में आप देखें कि लोगों ने कहा है बाकायदा कि किस तरह से जो है एआई को इस्तेमाल किया गया है इलेक्शंस को जिताने के लिए। तो उसी तरह से ये प्रोपेगेंडा इस्लाम के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जाता है, हमारे अकीदों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। और ये जब होना शुरू हो जाएगा कि हो चुका है, तो फिर ये यहाँ पे जो है वो डरने की चीज़ है।
1: जी
0: तो इसीलिए इसमें बहुत अहम है कि इंसान जब दीनी मालूमात, दीनी मारिफत हासिल करना चाहे तो मोतबर सोर्सेस से हासिल
1: ऑथेंटिक
0: करे,
1: सोर्सेस,
0: ऑथेंटिक सोर्सेस से,
1: जी
0: और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि एक मोतबर आलिम दीन से, क्योंकि जो इस्लाम में इसकी ताकीद है कि इंसान इंसानी राबता बरकरार रहे, क्योंकि बहस सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन की नहीं है, नहीं बस ये
1: बिल्कुल
0: नहीं कि कोई एक आलिम दीन है आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, अब मैं जाके चैट जीपीटी से ले लूँ। चैट जीपीटी वैसे भी एक्यूरेट आपको नहीं देगा, उसमें बायस और तमाम खतरात है, लेकिन हद तक बरफर्ज दे भी दे तो मकसद ये कि आप जब इंसानों के दरमियान रابطہ है तो वो तरबियत, वो उसका पहलू वो हो
1: रोल
0: जाए,
1: मॉडलिंग,
0: रोल मॉडलिंग है, तरबियत है, और हद तक मालूमात के लिहाज से भी आपकी ज़रूरत के मुताबिक एक आलिम दीन या एक मोतबर ज़रिया वो आपको बता सकता है। तो ये बहुत अहम है कि इंसान बिल्कुल
1: रिप्लेस ना कर दे अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को और कहे कि ठीक है अब ये नई चीज़ आ गई, क्योंकि मसला हमेशा यही होता है, क्योंकि ये आसान है, ये एक्सेसिबल है, ये फ्री है, ये मशीन है, इससे गुफ्तगू नहीं करना है, इससे टाइम नहीं लेना है, तो लोगों के जहन में ये बात आता है आती है कि भाई दीनी कोई भी चीज़ है, सवाल है, बस चंद क्लिक करें। तो इसका मुश्किल इसमें यह है कि हमेशा आसान रास्ता सही रास्ता नहीं होता, इंसान को लगता है कि ये आसान है तो सही होगा, कभी कभी इंसान को सख्त रास्ता इख्तियार करना है ताकि हकीकत तक और सही मारिफत तक पहुंच सके, और खुद ये एक जिहाद है, खुद इंसान सही इल्म और सही मारिफत और सही दीन की मालूमात तक पहुंचे, खुद ये हमारे एक जिहाद, जिहाद बा नफ्स और खुदा से नज़दीक होने के जो है उसका एक हिस्सा है, ये एक अहम
0: कम से
1: हिस्सा है।
0: कम दीनी मामलात में हमारे पास कोई वेरिफिकेशन सोर्स होना
1: बिल्कुल
0: चाहिए। जैसे हमारी किताबें, हमारे पास कई सारी मोतबर किताबें हैं, मोतबर उलमा हैं, इनसे राबता इस वजह से कम हम बरकरार रखें कि जो इंफॉर्मेशन बहरहाल आ रही है, लोग जाएंगे इसके
1: और हम
0: पीछे और
1: प्रमोट भी कर
0: लेंगे।
1: रहे हैं, यानी हम
0: जी
1: ये कह रहे हैं
0: बिल्कुल,
1: कि आप
0: लेकिन ये
1: जाके यूज़ करें।
0: वेरिफिकेशन जो है वो
1: जी
0: मुझे करना है, फिर
1: जी
0: वो सबको करना है अपने
1: हाँ,
0: लिए।
1: तो यानी जो टूल्स हैं एआई में, मिसाल के तौर पर अभी एआई मूवीज़ बना देता है, मैं मिसाल दूं, फॉर एग्जांपल हम सबील कुरान चैनल के लिए हम लोगों ने एआई का इस्तेमाल किया, पहले हम लोगों ने उर्दू में जो कुरान डब कुरान को वो कराया, ऑडियो रिकॉर्ड किया, उसमें हम लोगों को तकरीबन शायद 2 साल लग गए ऑडियो रिकॉर्ड करने में, लेकिन जब हम लोगों ने इंग्लिश में रिकॉर्ड करना, उर्दू इंग्लिश में रिकॉर्ड किया, एआई को पूरा कुरान का डेटा दिया और कहा कि ऑडियो कर दो, टेक्स्ट टीटीएस, टेक्स्ट टू स्पीच
0: बिल्कुल
1: टेक्नोलॉजी, तो उसने 10 मिनट के अंदर जो है पूरा डेटा, हमें सुनने में ज़्यादा वक्त लगा लेकिन उसने पूरा डेटा जो
0: बिल्कुल
1: है वो
0: बिल्कुल
1: 10 मिनट में पूरा उसने
0: बिल्कुल
1: प्रोसेस करके, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो 10 मिनट लगा, शायद दूसरे कंप्यूटर्स में और कम लगता, तो उन्होंने पूरे कुरान को जो है वो आपको 10 मिनट में पूरा ऑडियो आपको दे दिया। अब वो ठीक है, वो ह्यूमन फीलिंग्स और ह्यूमन अभी वो उस परफेक्शन पे नहीं पहुंचा, लेकिन वो कह रहे हैं हम अपने आप को और अपग्रेड करने की
0: कोशिश
1: कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खुद एआई के अंदर, खुद टीटीएस टेक्नोलॉजी में भी जब हम लोग जाते हैं तो हम देखते हैं दुनिया में 3-4 कंपनीज हैं जिनके
0: उन्हीं के
1: पास
0: हाथ में।
1: पूरी दुनिया का कंट्रोल उनके पास है।
0: और हत्ता बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बहुत सारे दूसरे कंपनीज जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उन्हीं से ले रहे हैं, उन्हीं जी
1: के
0: जी
1: सर्वर से,
0: पूरी
1: यानी वो जो
0: इंडस्ट्री है
1: मॉडल
0: बहरहाल
1: किसी
0: उन्होंने
1: के पास
0: बनाई
1: है
0: है।
1: तो ये
0: जी
1: दूसरे कंपनीज है, ये इंटरफेस
0: रीसेलर्स
1: आपको
0: हैं,
1: दे रहे हैं, रीसेलर्स है,
0: हाँ
1: तो लेकिन ये है कि उसी
0: बहरहाल
1: को
0: ये होगा कि
1: लेके थोड़ा
0: कंट्रोल
1: वेरी थोड़ा
0: थोड़ा
1: सी उसके अंदर वैल्यू
0: वैल्यू
1: एडिशन
0: एडिशन
1: करके देते
0: देते
1: हैं।
0: हैं।
1: तो ये अच्छा, इसके हम लोगों ने अलग अलग अब आप डिस्कस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम अपने व्यूअर्स को ये भी कहना चाहेंगे कि आप इसे यूज़ करें, आप
0: यकीनन
1: जानें कि मिसाल के तौर पर अगर कोई रास्ता, जैसे कुरान हम लोग 2 साल फिर से रिकॉर्ड करते हैं, तो ये अकलमंदी नहीं होती जब वही वही चीज़ 10 मिनट में हो सकती है, तो आप जिस भी फील्ड में
2: आप अपनी फील्ड में अगर स्टूडेंट हैं तो आप चैट जीपीटी यूज करें।

0: रिसर्च में यूज करें, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन के
1: बिल्कुल
0: साथ। दूसरे तरीके से, अगर आप जिस भी फील्ड में हैं तो आप खुद आइडेंटिफाई करें इस फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पर है, ताकि आप फर्स्ट मूवर्स बने, ताकि आप जो है फर्स्ट लेवल पर जो है कोशिश कर सकें। अच्छा, खतरात के हिसाब से हमने बात की, सर्वेलेंस के हिसाब से बात की, जो डेटा हम खुद व्हाट्सएप पे डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, ये कहते हैं एनक्रिप्टेड होता है, क्या हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं एनक्रिप्टेड होता है?
1: देखिए इसमें ये कि जो कंपनी है वो कहते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, लेकिन जो कंपनी के पास जब डेटा आता है तो अगर वो चाहे तो उनके पास एक्सेस है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। और ये फरावान मसलन न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी आता है कि मसलन किसी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक ने फेसबुक को रिक्वेस्ट भेजी कि हमें इतने इतने अकाउंट्स का डेटा चाहिए, उन्हें कंप्लाई करना है,
0: देना है,
1: यानी उसमें कोई शक नहीं है, यानी एक अमेरिकन कंपनी हो और वो अपना डेटा मसलन इन एजेंसी के साथ शेयर ना करे, नामुमकिन है, उन्हें काम वहां करने नहीं।
2: हत्ता ऐसी मिसालें मिलती है कि कुछ ऐसी ईमेल कंपनीज, काफी पुरानी मिसाल है कि जब उनसे ये डेटा रिक्वेस्ट किया गया, इन्होंने अनाउंस किया अपने कस्टमर्स को कि हम डेटा देने वाले हैं फला दिन, इससे पहले अब उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप जो करना है। इस हद तक भी
1: टेलीग्राम के हवाले से जो इख्तलाफात चलते रहते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में बैन होता है, उसमें जो अहम नुकता होता है वो ये होता है कि वो जो मुल्क जो बैन कर रहा है वो कहता है कि आपके डेटा सर्विस हमारे मुल्क में हो ताकि हमारे हमें डेटा एक्सेस हो। टेलीग्राम कहता है कि नहीं, हम अपने पास रखेंगे, और टेलीग्राम का रब्ता अमेरिकन जो उनके जो एजेंसी उनके साथ बहुत गहरा है। टेलीग्राम के पास जो डेटा है वो बहुत ज्यादा एहतमाल है कि जो अमेरिकन एजेंसी उनके इख्तियार में, तो कोई वो नहीं है। और चाइना मसलन, चाइना ने अपना व्हाट्सएप का जो इक्विवेलेंट बनाया वीचैट, उसके पीछे भी एक यही मकसद था कि पूरा चाइनीज डेटा अमेरिकन सर्वर्स पे स्टोर ना हो, अगर हमारे लोग इस्तेमाल कर रहे तो वो हमारे यहाँ पे स्टोर। तो ये डेटा सिक्योरिटी और डेटा एक्सेस अहम है, और शायद ये बहुत वाज़े चीज़ है जो थोड़ा बहुत जाके मुताला करे कि ये एक्सेस बहुत आसानी
0: तो,
1: से होता है।
0: हाँ, यानी हम ये अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहते हैं कि सर्वेलेंस उनके पास हर चीज़ की है, हर बात की है। आप कभी भी अपने आप को ये सेफ ना समझें कि टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है और आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, खुद अभी जो मारे जा रहे हैं मजलूम, उनके अंदर टेक्नोलॉजी, उनके पास जो है मोबाइल जो है उसके ज़रिए से जासूसी की जा रही है, फिर हमला किया जा रहा है। तो आप ये क्लियर रहें कि आपको सब देख रहे हैं, आपको सब सुन रहे हैं, आप इसके बारे में बिल्कुल भी वो ना रहें। अच्छा, एक और जो आखिरी हमारा पॉइंट से शायद डिस्कशन का, वो ये है कि मुस्लिम्स और खुद एक मैं डिस्कशन मुस्लिम्स पर आने से पहले कि चाइना की आपने मिसाल दी कि चाइना ने जानता है चाइना भी, बिकॉज अभी दुनिया में जो ईस्ट और वेस्ट की जंग है उसके अंदर चाइना और रशिया एक तरफ है, अमेरिका एक तरफ है, चाइना खुद टेक्नोलॉजी में, और हम देखते हैं टिकटॉक जो है चाइनीज़ है उसका असर अमेरिका में जेन जी के ऊपर कितना ज़्यादा था, और अभी जो अमेरिका में सर्वे किया गया उसमें पता चला कि 50% से ज़्यादा जो जेन जी वाले जो हैं, जो कम एज वाले वहाँ के बच्चे हैं या जवान हैं, वो बिलीव करते हैं कि फ़लस्तीन को हक है और इसराइल जो है वो ज़ालिम है। लेकिन ये कैसे हुआ? तो कहा गया कि टिकटॉक का असर था, क्योंकि टिकटॉक ने सेंसर नहीं किया इन्फॉर्मेशन को और वो उन तक पहुंची। अच्छा, ये हमारे लिए क्लियर है कि टिकटॉक जो है वो ज्यादा दिन तक जो ये लोग रहने नहीं देंगे, क्योंकि इनके एक्चुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो चाइना ने कैसे चाइनीज मॉडल जो है वो उनके एक तरीके से उनके मुकाबले में एक रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी का मॉडल है, तो चाइना किस तरीके से इसको मैनेज करता है कोई अगर?
1: इसमें शायद जो अहम नुकता है वो दो चीजें, एक ये कि क्योंकि टिकटॉक यूट्यूब का कंपटीटर है, और YouTube जो बड़ी चीज़ है, जितनी बड़ी चीज़ है, YouTube के मुकाबले में कोई चीज़ आप खड़ी करना चाहते हैं तो उसको फरावान पैसा और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो कोई मामूली मसलन कंपनी या मसलन एक मुल्क जिसके पास इतना बजट नहीं, वो उसको खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन चाइना के पास ऐसे प्राइवेट कंपनीज है जिन, और टेक्नोलॉजिकली भी उनके पास ये सलाहियत है कि एक ऐसा YouTube को जो कम्पीट करे वो सिस्टम ईजाद करे। तो पहले तो ये कि उतनी तवानाई हो। दूसरा जो मुझे लगता है वो ये था कि टिकटॉक ने आकर जो जेन जी है उसका माइंडसेट जो है, और जिस उनकी जो शरायत ज़िंदगी है जिसमें ये कि बहुत टाइम उनके पास नहीं है, तो उन टिकटॉक ने आके ये पैटर्न ईजाद किया, बहुत शॉर्ट वीडियोस, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, कि उसका नतीजा ये हुआ कि यूट्यूब मजबूर हो गया, उसने शॉर्ट्स को इजाफा किया।
0: दो लेयर्स हैं, इंस्टाग्राम ने रील्स किया और यूट्यूब ने शॉर्ट्स किया,
1: और ये कहा जा रहा है कि टिकटॉक की वजह, यानी टिकटॉक ने एक देखा कि अमेरिकन सोसाइटी में, वेस्टर्न सोसाइटी में, जेन ज़ी में, इन्होंने इस बात

0: नुक्ते को कैच किया, पॉइंट को कैच किया कि ये एक पोटेंशियल है, यानी यहाँ पर हम अपना रास्ता खोल सकते हैं, शायद दूसरी जगह इम्कान नहीं है। तो शायद उन्होंने इसको रियलाइज़ किया, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, टेक्नोलॉजी भी थी, और शायद तीसरा उनसुर इसमें हो जो उसमें मॉनेटरी वो होता है कि जिस तरह यूट्यूब भी पे करता है कि आपके इतने व्यूज़ होंगे वगैरह, तो पैसा भी इंसेंटिव बनता है। मखसूसन वो जो टिकटॉक पे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्यों वीडियोस बना रहे, क्योंकि मॉनेटरी भी फायदा है। तो ये दो तीन चीज़ें मिलकर नतीजा ये हुआ कि अचानक से ये इसने वो किया, और उसका फ़र्क भी जिस तरह आपने बयान किया बहुत वाज़ है। यानी जब ये हुआ काफ़ी दिलचस्प वो है कि टिकटॉक पर जब डेटा देखा गया कि फ्री पैलेस्टाइन जो हैशटैग है और उसका कंपैरिजन किया गया मसलन इसराइल के लिए एक हैशटैग था, तो उसका मुकायसा इस तरह हुआ कि फ्री पैलेस्टाइन जो हैशटैग है वो 25 बिलियन टाइम्स शेयर हुआ, और उसके मुकाबले में जो हामी इसराइल हुआ था वो 500 मिलियन। तो जब ये हुआ तो बहुत सारे वहाँ वेस्टर्न मीडिया ने आके वो कहा कि टिकटॉक अल्गोरिदम्स को मैन्युपुलेट कर रहा है पैलेस्टीनियन फेवर में। तो जो टिकटॉक का चीफ था या उनका एक ऑफिसर था, उसने आके बयान दिया, उसने ये बयान दिया, कहा कि हमने अल्गोरिदम को मैन्युपुलेट नहीं किया है, मैं क्या करूं, जवान प्रो पैलेस्टाइन है
1: जी,
0: यानी एक हकीकत को। और कितना उस तरफ से फेसबुक, मेटा, ये लोग कितना सप्रेस कर रहे हैं अपने अल्गोरिदम्स के जरिए। इस पे भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौजूद है, अल जजीरा पर अलग कि बाकायदा इस पे गुफ्तगु हुई है कि किस तरह इसको मैन्युपुलेट किया जाए।
1: अच्छा, यहीं पर जो ये एक रابطہ, एक रिलेशन कल्चर एंड पॉलिटिक्स ये जो है, और ये AI एंड पॉलिटिक्स और कल्चर, ये सारा चीज़ जो है बग़ैर वो पॉलिटिकल विल के, जैसे ईरान में रहबर मुअज़्ज़म ने एक पॉलिटिकल विल दिखाई है, अब वो जो नीचे के लोग हैं वो उसको लेके अगर आगे बढ़ें, तो जैसे रहबर मुअज़्ज़म ख़ुद कहते हैं कि एक ज़माना था कि सिर्फ हम ऑयल के लिए जाने जाते थे, अब हम ऑयल के लिए, हम टेक्नोलॉजी के लिए भी जाने जाते हैं, अब हम जो हैं वेपन्स के लिए भी जाने जाते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए भी जाने जाते हैं। तो जब तक ये मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ अगर हम पलटते हैं, तो क्या मसलन आप इतनी बड़ी मुसलमानों के लिए, खुद रहबर मुअज़्ज़म बार बार कहते हैं कि मसलन स्ट्रेटेजिक पोजीशन है लोकेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, ऑयल के हिसाब से, गैस के हिसाब से, नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से, जवानों के होने के हिसाब से, दुनिया में सेंट्रल पोजीशन होने के लिहाज से, ऑयल का पूरी दुनिया का यहाँ से गुजरना, शिप्स का यहाँ से गुजरना, हर लिहाज से मुसलमान एक सेंट्रल पोजीशन में है कि अगर ये जो चाइना का जो पॉलिटिकल विल है कि हमें रेजिस्टेंस दिखाना है, हद तक टेक्नोलॉजी में रेजिस्टेंस दिखाना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रेजिस्टेंस दिखाना है, जब तक ये तसव्वुर इजाद नहीं होगा, जब तक हकीकत में मुसलमान जो है उसका मुकाबला
2: नहीं कर सकते, तो वो पॉलिटिकल विल की जो आपने बात कही, चूँकि चाइना जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री है आइडियोलॉजिकली, और हम उसकी तायद तो नहीं करते, लेकिन देखें उनको भी ये समझ में आ गया है कि आज का जो निज़ाम इस्तेकबार है उसके मुकाबले में जो हो रहा है दुनिया में, उसको बगैर कोई ट्विकिंग करके अगर दुनिया में फैला दिया जाए, खुद ब खुद लोग जो है फैसला करेंगे कि ये जो निज़ाम है ये कितना जालिम निज़ाम है। अतः चाइना को ये समझ में आ गया है
1: जी।
2: और ये पॉलिटिकल विल, चूंकि ऐसी चीज़ असल ये कि खड़ी होना बहुत मुश्किल हो जाती है, यानी टिकटॉक जैसी चीज़ जिसको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, लाखों करोड़ों रुपये जिसको चाहिए, डॉलर जिसको चाहिए, वो चाइना जैसी कंट्री खड़ी कर सकता है, और वो पॉलिटिकल विल उसमें अहम किरदार अदा करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस्लामी ममालिक है उसमें हमको ये कलेक्टिव पॉलिटिकल विल जो है, ये तमाम हकायक जो आपने बयान किए उसके बावजूद नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे लोगों पे जो है बहरहाल, चूँकि ज़िम्मेदारी तो हटती नहीं है, अगर चूँकि पहले जो ज़िम्मेदारी थी ये जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, सियासी अफराद हैं, इनकी थी, अगर ये नहीं अदा कर रहे तो फिर बहरहाल वो जिम्मेदारी जो है वो आती है, उसका जो नेक्स्ट लेयर है उस पे आती है, फिर लोगों पे आती है,
1: उलमा पे, इंटेलेक्चुअल पे, इंटेलेक्चुअल्स पे,
2: जी जी, ये तमाम लोगों पे जिम्मेदारी।
0: रहबर इनकलाब ने यही नुक्ता बयान फरमाया था कि जो मुसलमान माशरे में जो एलीट है, यानी जो उलमा है, इंटेलेक्चुअल्स है, फाइनेंशियल एलीट है, इनकी जिम्मेदारी है कि ये जो मासेस है और जो मुसलमान लोग है, पब्लिक है, इन्हें बेदार करें, और जब मुसलमान पब्लिक बेदार होगी तो जो मुसलमान हुकूमतें उन पर प्रेशर आएगा ताकि ये पॉलिटिकल विल ईजाद हो। ये तो उन्होंने तरीका भी बताया कि ये जिम्मेदारी है जो एलीट है, पूरा प्रोसेस है कि बेदारी का, कि पहले एलीट समझे, जो लोग समझते हैं, मसाइल को जानते हैं, जो हर एतबार से एलीट, मसलन जो थोड़ा सा भी दूसरों से आगे, वो एक माना में एलीट है, जैसे

0: है, अपनी बसीरत में इजाफा करें, दुनिया को पहचाने क्या हो रहा है, और फिर देखें कि हमारे अतराफ में जहाँ पर हम हैं हमारी जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि मुमकिन है हम कोई ग्लोबल लेवल पे कोई एक्शन ना ले पाए, लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि थिंक ग्लोबली, आपका जो तसव्वुर और फहम होना चाहिए वो ग्लोबल होना चाहिए। अलबत्त वो मुतासर करेगा जो आप लोकली और आपके अतराफ में जो अमल अंजाम दे रहे हैं। तो हम अपनी जिम्मेदारी अंजाम दें जहाँ पर भी है, हर कोई अपने एतबार से, लेकिन इस फहम और बसीरत के साथ के ये नई चीज़ें भी, उनमें से एक अहम मौजू है जो आज
1: इसमें सिर्फ
0: गुफ्तगू।
1: एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था कि जो रूहिया जो है, जो अप्रोच है, वो इमाम खुमैनी रिजवानल्लाह ताला की मामी तवानी वाली अप्रोच जो है ना, क्योंकि हम लोग ने जितनी बात की तो एक शायद वो एक जवान बैठेगा,
0: फिक्र मायूसी वाला
1: हाँ वो
0: तसव्वुर बन जाता है।
1: इंजीनियरिंग कर रहा है, वो एआई करना चाहता है, लेकिन वो सोचेगा
0: जी
1: कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, इतनी बड़ी चीज़ें हैं। तो वो जो तसव्वुर जो इमाम खुमैनी ने दिया, यस वी कैन वाला, कि वो
0: सही,
1: बहुत अहम
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: है।
0: और यहीं पे एक जहन में प्रैक्टिकल नुक्ता भी आ रहा है, वो जवान जो अभी फ़िलहाल एआई की फील्ड में है किसी भी वजह से, तो यहाँ पे वो खुद सोचे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे अब एआई के अंदर डेटा सेट्स होते हैं मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पे आपको बैंकिंग सेक्टर में जो है कुछ करना है, तो आपको वैसी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, हर इंफॉर्मेशन लेके उसका फ़ायदा नहीं है, तो उसके डेटा सेट्स होते हैं और जो एआई के फील्ड में उनको पता है। तो यहाँ पे ये पूरा मैदान खाली है कि हमारे जो इस्लामी डेटा हमारे पास जो इतना मौजूद है, उलमा ने जहमत की है, हज़ारों लाखों किताबें हैं, इनको तब्दील किया जाए डेटा सेट्स में, कि जो फिर वो एआई मॉडल्स इस्तेमाल करें ताकि निस्बतन बेहतर आउटपुट उससे निकले। तो ये एक काम है जो हमारे जो जवान आज एआई फील्ड में उसकी तरफ जा सकते हैं छोटे लेवल पे, तो
1: जी
0: ये एक प्रैक्टिकल नुक्ता हमारे जवानों के लिए हो सकता है कि उस पर काम
1: सही।
0: किया जाए।
1: एक और पॉइंट जो है वो ये है कि हिंदुस्तान के हवाले से, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर जवान इंजीनियरिंग में हैं। एक एक तो हिंदुस्तान, दो हिंदुस्तान है जो हमारे यहाँ अक्सर जो है, गरीबों वाला हिंदुस्तान और एक अमीरों
0: जी,
1: वाला
0: और दोनों को
1: हिंदुस्तान।
0: एक दूसरे की खबर नहीं है
1: हाँ,
0: मसला।
1: तो लेकिन ये जो हिंदुस्तान है जिसके अंदर लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, मसलन एक तालीम याफ्ता हैं, वो स्किल्स के लिहाज से उनके पास स्किल्स मौजूद है। लेकिन
0: बिल्कुल
1: यही पूरी दुनिया में जो इस वक्त एआई का जो एक वो है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहती हैं, उसके मुकाबले पे वो हिंदुस्तानी मुस्लिम्स और हिंदुस्तान की बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनकी क्या जिम्मेदारी है?
0: यकीनन जिम्मेदारी हर इंसान की, हर माशरे की, हर कम्युनिटी गुरु की होती है कि अपने हालात में जितना वो खिदमत कर सकते हैं, जितना आगे बढ़ सकते हैं वहाँ तक आगे बढ़े। तो सर आपने कहा कि यकीनन इस्लाम के नज़दीक मायूसी का कोई तसव्वुर नहीं है, और हम हकायक को भी देखें कि अगरचे आप देख रहे हैं कि मसलन ये जुल्म है या जेनोसाइड है या दूसरे मसाइल है, लेकिन उसके मुकाबले में उतना ही रेजिस्टेंस है। यानी जिस तरह से इनकी टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ है, उस तरह मोमिनीन और मुस्लिमीन के अंदर जो
1: ईमान में
0: रेजिस्टेंस और ईमान में, इसमें भी इजाफा हुआ। तो हम सबसे पहले तो अपने ईमान को मजबूत करें, दूसरा ये कि ये रेजिस्टेंस और ये कि हमें मेहनत करनी है, हमें कोशिश करनी है, इस चीज़ को अपने अंदर ज़िंदा करें और अपने हालात में देखें, मसलन हिंदुस्तान के अंदर देखें, मिसाल के तौर पे एआई में हमारे पास जो रिसोर्सेस है, यकीनन वो उतने नहीं है जो सामने मुकाबले में जितने, लेकिन इंसान ये कहते थे कि हमारे पास इतने रिसोर्सेस है, इससे हम क्या कर सकते हैं। और खुदा का तरीक़ेकार भी यही होता है कि जब इंसान उसके पास जितने रिसोर्सेस है उसको इस्तेमाल करके अपना बेहतरीन कोई
1: आउटपुट दे।
0: कारनामा आउटपुट देता है, खुदा फिर ऐसे दरवाजे खोलता है जिसकी तवक्को इंसान को नहीं होती। यरज़ुकुहु मिन हैथु ला यहतसिब।
1: बिल्कुल
0: तो और हमारी जिम्मेदारी भी इतनी है, जितना हम कर सकते हैं हम करें, अपने आप को कम ना समझें और बहुत कुछ कर सकते हैं। अगरचे शायद मुवाजना किया जाए इब्तदाई तौर पे, कह के उनके पास तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम शायद एक चिप भी नहीं खरीद सकते, तो कहते हैं नहीं ठीक है आप एक चिप खरीद के एक मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, एक आप उसमें कदम आगे बढ़ा सकते हैं, या उसके रिसर्च में कोई गोशा है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं, तो आप वहाँ कदम आगे बढ़ाएं। और ईमान के रास्ते में होता यही है कि शायद आखिर तक रास्ता इंसान के लिए वाजे ना हो, इंसान कदम आगे बढ़ाए, और ये खुदा का वादा है कि जो भी खुदा के रास्ते में कदम उठाएगा, लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि वो हिदायत फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान के लिए
1: खूब
0: आते जाएगा।
1: बस एक आखिरी नुक्ता यहाँ पे, वो कुरान में जो मारूफ आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, के इस आयत को मामूलन
0: یوں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خدا جو ہے اتنی ہی ذمہ داری آپ پہ ڈالے گا جتنی آپ کی وسعت ہے، جتنی آپ کی کیپیسٹی

0: कैपेसिटी है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इंसान की कैपेसिटी कितनी है, ये अहम सवाल है। और इंसान की कैपेसिटी अगर पोटेंशियल के एतबार से देखी जाए तो वो लानिहायत है, मतलब उसकी कोई नहायत नहीं,
1: पूरी कायनात छुपी हुई है
0: बिल्कुल। और लेकिन ये जो है एक दिन में एक्चुअलाइज नहीं होती, धीरे धीरे, वही जो काजिम भाई ने यहाँ पे नुक्ता कहा, जितने रिसोर्सेस है आप उसको इस्तेमाल करेंगे उतनी कैपेसिटी आपने एक्चुअलाइज की तो नई कैपेसिटी आपके अंदर आएगी, क्योंकि पोटेंशियली आप बेनिहायत है, समझ रहे हैं? वो आप दिया, मिसाल उसकी ये है कि आप दिया लेके जब आप चल रहे हैं, आपसे कहा जाए कि ये दिया आपके पास है और आपको मसलन 10 किलोमीटर चलना है, आप क्या कहेंगे? ये भी कह सकते हैं कि भाई इतना छोटा सा दिया है मुझे जो है 1 मीटर से ज़्यादा नहीं दिख रहा, तो उसको जवाब क्या देंगे? जाहिर सी बात है आप उससे कहेंगे चल के तो देखो, जब वो चलेगा तो वो रास्ता रोशन होता जाएगा और वो पहुंच जाएगा अपने मकसद तक,
1: वहां से उसे वो चीज मिलेगी जो आगे के रास्तों को
0: उसको चलना पड़ेगा।
1: तो ये अहम चीज है कि एआई एक ऐसी फील्ड है जो दुनिया फ्यूचर और खुसूसन ज़हूर इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की तरफ तवज्जो करते हैं, वो दुनिया की तरफ तवज्जो करते हैं जहाँ इल्म है, टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अहम चीज ये है कि ये बना ये रहे हैं इंशाल्लाह, इस्तेमाल इंशाल्लाह मोमिन करेंगे जब वक्त आएगा, जब मोमिन
0: पूरी इंसानियत को कमाल तक पहुंचाने
1: के लिए, तो ये मुकदमे शायद हमारे ज़हूर के तय हो रहे हैं इंशाल्लाह। तो उसी रूहिए उसी अप्रोच के साथ आप जवान जो है मैदान में आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है, आप टॉप करें, आप यूनिवर्सिटीज़ में टॉप करें, आप जहाँ रहते हैं टॉप करें, बड़ा विजन रखें, मोरालिटी एथिक्स स्पिरिचुअलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें, और खुदा ऐसे रास्ते खोलेगा शायद आपके ज़रिए से कि आप जो है खुद ताज्जुब करेंगे 20 साल के बाद के मैं ये था, मैं तो सोच भी नहीं रहा था कि खुदा मुझे यहाँ पहुँचा देगा। और जो लोग पहुँचे हैं खुदा के रास्ते पे, उन लोगों ने यही कहा है कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि खुदा ने कहाँ पहुँचा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग दोनों ने वक्त दिया, मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रही बातें, शुक्रिया बहुत बहुत दोबारा स्टूडियो में आने का, जज़ाकल्ला। और मोमिनीन आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपकी क्या व्यू रही और खुसूसन आपने क्या इस प्रोग्राम से सीखा, और अपने इस प्रोग्राम को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इल्तमास दुआ, खुदा हाफिज़।
2: अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज।
3: एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ प्लेस वेयर दे फील सेफ, सिक्योर, valued, inspired and loved. Welcome to our Muntasir Islamic International School, where learning begins with care, confidence and compassion. Give your child a place to belong, learn and flourish. Admissions are now open at our Muntasir Islamic International School. Come and discover a nurturing environment where every child matters. We are committed to excellence enriched by faith.